बापू, प्यो, डैडी, पापा, बड़े नाम ने इस शख्स दे। अजकल समा थोड़ा जिहा मॉडर्न हो गया, पर कोई समा सी कि असी अपने बुजुर्गों नूं, अपने बापू नूं प्यार भी नहीं जिता सकते सी। सानू जिताउणा आउंदा नहीं सी, सानू बापू नूं कहना नहीं आउंदा सी कि बापू यार मैनूं बहुत चंगा लगदा, तू बहुत मुहब्बत करदा मैं तेनूं। इदां ही बापू मेहनतां करदा करदा मिट्टी नाल मिट्टी हुंदा हुंदा मिट्टी हो गया, एक दिन सिर्फ यादां छड्ड गया पिछे।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: चौबी घंटे सत्ते दिन खुला सब्जी मार्केट, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट। यहाँ पहुँचो 10,970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां, फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम। ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच, अमृतसरी कुलचा विद चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399। सब्जी मार्केट।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दी संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिब आवे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नूं बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां?
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरा नूं कॉल करो
3: 416-717-2929।
0: 416-717-2929। क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, 14 स्टेनवे बुलेवर्ड, यूनिट 4, इटोबिको।
4: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल, टू लोकेशन टू सर्व यू, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
5: पाजी, अज घरे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ घरे नहीं बन पाउना।
0: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
5: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111, 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
6: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
7: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
6: एसी फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640,
7: 647-706-6640।
8: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करां?
9: मैं सुनया जी, अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, P&J स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
10: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड, मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन, डिक्सी एंड मैथसन।
11: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
9: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
11: 905-459-5533,
9: 905-459-5533 ते
11: P&J स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
12: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026।
13: ओए सावन चढ़िया ती,
12: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो,
13: दुनिया मेले जांदी
12: इन थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो। मनमोहन वारिस, कमल हीर अते संगता। टिकट्स आर अवेलेबल एट ticketmaster.ca। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टीम फॉर एंटरटेनमेंट 647-400-6862, 416-303-4444। ये तुसी इस शो नू मिस करना चाहोगे?
14: ओए इस साल ता इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्ता ने सारा बजट हिलाता।
15: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
14: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761, 416-618-2761।
16: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
17: आहो जी, मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
16: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
17: एक बार आओगे बार बार आओगे।
16: अनबीटेबल प्राइजेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 क्वीन स्ट्रीट, ईस्ट ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन क्वीन एंड ब्रैमले।
17: कॉल गगन और गुरिंदर एट 905-286-9257।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640।
4: रोकी तू तो अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1500।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: वैल्यू जे तुसी वधाउणी है या एक्स्ट्रा इनकम लई लीगल बेसमेंट तैयार करवानी होवे या अपने घर नूं नवीं अते खूबसूरत लुक देनी है तां संपर्क करो नानक रेनोवेशन दे नाल। लीगल बेसमेंट, बेसमेंट फिनिशिंग, कॉन्क्रीट ड्राइववे, पैटियो या कोई भी रेनोवेशन दा काम नानक रेनोवेशन। एक्सपीरियंस टीम समय सिर काम करदे ने, बहुत ही रीजनेबल रेट। फ्री एस्टिमेट ले कांटेक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293 नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपनेयां नूं पूरा करनगे। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984
3: थैंक यू सो मच जी। 905-673-3337 जुड़े हुए पंजाबी लहरां दे नाल। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू, मैंने एक वीर का मैसेज आया, कहिंदे वीरे मैं शायर तो नहीं, जब से देखा तुम्हें शायरी आ गई। क्या बात है। 905-673-3337 दे जुड़े हुए हो और गाना भी सुनना बनता आ। शायर की जो गल करते हैं आप, अजकल क्यों नहीं लिखते आप शायर? जिमें चलो सौरभ रतन जी ने बहुत सोहना कहा कि असी एहसास कितना कितने साड़ा घटता जा रहा। तुसी लिखते हो यार, लिख के तो देखो। अच्छा तुसी अपने आप नूं झंझोड़ोगे ना, अंदर एक थोड़े शायर बैठा उन्हों हिलाओ माड़ा मोटा, टाइम की कॉफी कॉफी पिलाओ, उठूगा, उन्हें लिख लेना है, कोशिश करो। वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, लौंग वीकेंड की, अपने सोहने अपने प्यारे अपने महबूब न अपने सज्जन लिखो, दो लाइना अंदरों कढ़ो, अपने शायर कहो कि उठ बई अपने वास्ते लिखो। पर जरूरी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ। 905-673-3337 माफ़ करना रंजीत सिंह सदी, माफ़ करना यार सदी औरा। एनी वे बाई जी, थोड़ा नाम मैंने पढ़ने च बड़ी दिक्कत आ रही है। बाई रंजीत सिंह होना वालों फरमाइश की इस सॉन्ग की।
4: नशा तो नहीं,

क्या बात है यार, 905-673 33-37। यार यार शायरां नूं समझना बड़ा मुश्किल आ। शायरां दी जिहड़ी मैनूं लगदा कि इहनां दी जिहड़ी किस्म आ ना उह वक्री आ। बड़े नाजुक हुंदे ने, बड़े कोमल हुंदे ने, बड़े सुहिरद हुंदे ने, ते इंसान बहुत प्यारे हुंदे ने। थोड़े च कोई लिखदा, कोई शायर हैगा तां दस्सिओ यार, 905-673-33-37। ऐसे प्यारे इंसानां नाल गल्लबात करन

सो 905-673-3390-56-73-337 और फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत है जी। अज उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ दी कला दे विच होंगे। अज दे खूबसूरत दिन तुम इंजॉय कर रहे होंगे।

0: ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ।
1: ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਮ ਐਕੁਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-671-2000 905-671-2000। ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200
3: 42 साल तो टॉप सेल इन ओंटारियो कार डीलरशिप का नाम मिल्टन फोर्ड तो चोपड़ा। कितों भी गड्डी खरीदने तो पहला मिल्टन फोर्ड से कॉल कर सकते हो 416-302-9941
4: Mr. Sandhu.

0: भी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: हेलो ब्रो, किथे है तू?
2: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदिया ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ उन्हां नु, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलदी है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
2: ओहो, ये ता प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 9054512600, 9054512600।

0: Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद.
2: I love it.
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
1: हम सबकी पसंद.
4: Radio Awaaz.
1: Every morning from Monday to Friday, 9 to 10 and Saturday, 10 to 1 on AM 530. Non-stop calls, non-stop talks. Promote your business with us. Contact 416-518-3200.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.

सो काज खूबसूरत स्वेर दा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। सो इसी उम्मीद नाल एक बार फिर तो कि अज का दिन बहुत खूबसूरत चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर है। तो अज के दिन के भी असी यह तय करना कि असी किन्नी किसी लिए ईरखा किसी लिए मतभेद किसी लिए उन्हों नीवा उच्चा दिखाने की कोशिश करनी है कि अपने आप दे उपर आपां अज फोकस होकर चलना। दैट्स ऑल अबाउट द डे। तो तुसी अपना दिन किवें बजा रहे हो ये तुहाडे ते डिपेंड करेगा। तो तुसी अज दे इस पॉजिटिविटी भरे हुए शो दे विच हमेशा शामिल होंदे हो। मैं अमनदीप सिंह बैनीपाल, बहुत सारे लोग नवे जिहड़े सानूं सुन रहे ने, तकरीबन डेढ़ दहाके तो 15 साल प्लस तो ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर दे विच मैं जो रेडियो काम कर रहा है और सारे दे रूबरू हो रहा हर रोज़ प्राइम टाइम दे विच और सैटरडे नू बिजीएस्ट टाइम जिहदे विच 10 बजे तो लैके 1 बजे तक लगातार 3 घंटे सानूं सुणदे हो दे विच भी तुसी शामिल होंगे हो। स्टूडियोज़ का नंबर हमेशा इतना 905-673-3337। मेरे नाल किसी ने कॉन्टैक्ट करना, अपना बिजनेस प्रमोट करना, देर आर टनस ऑफ कॉल्स मैनू तुहाडे आउंदे ने। तुसी जरूर अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए प्राइम टाइम रश आवर च तुसी साढ़े नाल 416-518-3200 416-518-3200 416-518-3200 ते गलबात कर सकते हो।

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: A to Z Kitchen Cabinet ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਦੇਖੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ A to Z Kitchen Cabinet 416-720-7073 905-720-7073 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
2: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
4: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
5: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
6: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
5: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
7: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: मिल जाएंगियां, बिल्कुल मिल जाएंगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो ता साड़ी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिए दिया ने। ते हाँ, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साड़े कोल अवेलेबल ने।
2: पर उसे मन सर्विस ते सब तो बढ़िया रेट्स ले इको एक ना। कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल
3: 32, 55, 80 हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: இல்லை போன்றோ பிராக்டன் கேஷ் அண்ட் கேரி 416-700-9100.
1: देखो जी, एक तो मच्छी होंदी है जिहड़ी पानी च रहिंदी, तो दूसरी मच्छी होंदी है जिहनूं वेख के मुंह च पानी आ जांदा है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिलदी है, आज ही चख लो।
0: कॉर्नर ऑफ मैकलॉगलन एंड रे लॉसन, कॉल 905-450-2800। नाउ ओपन टिल 2 AM।
2: आई एम देव टाटला एंड यू आर नॉट।
3: इंडियन फ्रूटलैंड, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
4: ले, इको जगह तू किथे सारा कुछ मिलता। दो चीजा लई एक जगह रुको, फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको।
3: इंडियन फ्रूट लैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट, ब्रैम्पटन।

0: वैनिटीज से न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
1: कंडीशंस अप्लाई।
2: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
3: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
4: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

0: एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन हायर कर रहे ने क्रॉस बॉर्डर एसी ड्राइवर्स बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी डेडिकेटेड ऑटो पार्ट्स डेली होम रन्स सेम ट्रक ते ट्रेलर्स लगभग 10,000 माइल पर वीक मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कुशावा इटोपिको अते बॉल्टन जे तुहाडी कोल भी है वैलिड एसी लाइसेंस क्लीन CBOR ते एब्स्ट्रैक्ट US बॉर्डर एलिजिबिलिटी ते फास्ट कार ता आज ही एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नो कॉल करो 9058462229 एक्सटेंशन है 4 या फिर 9053348222 यानी 905-846-2229 ते या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4
1: ताया साडा मीट मच्छी दा बड़ा ही शौकीन आ कहिंदा पार्टी विच नॉन वेज स्पेशल होना चाहिदा बस वे असी करदा फोन पंजाबी बाय नेचर वालेयां नूं ओ करे आके लाइव कुकिंग करके गए पंजाबी बाय नेचर वालेयां नूं कॉल करियो
2: पंजाबी बाय नेचर एयरपोर्ट एंड वे ते गो रूट 9057944667
3: रूपा बराड़ पांच वकीलां दी वड्डी एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट टीम है एक्सीडेंट तो बाद तुहाडे हक्कां लई खड़दे ने पांच वकीलां दी महारत एक्सपीरियंस टीम नूं पता है कि इंश्योरेंस कंपनी नाल किवें निजठिया जांदा है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर इन्हां ने अपने क्लाइंट्स नूं इंश्योरेंस कंपनी तों दवाए ने अपनी फीस केस सेटल होण तों बाद लैंदे ने रूपा बराड़ 416-991-5939 416-991-5939

0: इंडियन फ्रूट लैंड वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
1: ले इको जगह तो कितने सारा कुछ मिलता है। दो चीजा लई एक जगह रुको फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको।
0: इंडियन फ्रूट लैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
2: ओ उरे आ इधर ओए बंटी, मैनू ए दस कि तेरी जमात विच सब तो मेहनती विद्यार्थी केड़ा?
3: पापा मैं ही हां।
2: अच्छा ओ कदा
3: क्यों

0: चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395121 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
5: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच।
4: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
5: कॉल करो 905-874-9878।
6: बम्बा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बम्बा गया।
7: ना किद्दा दी तैयारी?
3: ओ जी मैं रसोई नु निगाह मारी, देखिया ग्रोसरी मुक गई सारी, ते फेर मैं बेस्ट एशियन ग्रोसर दी खिच लई तैयारी।
7: मेनू पता है आज ग्रोसरी दे नाल नाल आऊ बारो खान पीन दी वारी, क्योंकि इना कुल मिलदी है वैरायटी सारी।
3: जी हाँ, बेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर जिथे ग्रोसरी ते रेस्टोरेंट दोनों ने, जिथे तुहानू मिलेगा फिश, गोट करी, तंदूरी नान ते स्पेशल देसी स्टाइल पिज्जा। फन सर्विस भी प्रोवाइड कर देने। बेस्ट स्टेशन ग्रोसर इको प्लाजा विच तिन्नो ग्रोसरी देसी स्टाइल पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट कैम्ब्रिज। कॉल 519-621-7774।
8: जी मेरे वालों आप नूं ते सारे स्रोतां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
9: सत श्री अकाल मां साहब।

0: आई थिंक मैं एक दो वर्ड्स ऊपर नीचे करते, बट गाना बड़ा प्यारा, आप जरूर सुनांगे। फिलहाल तुसी गाना सुनो। नेक्स्ट कुछ समथिंग सीगा भी गुस्से ना होया कर सहेलियां दे सामने, एंड अगे किसी कली दे भावें गोली मार दी, समथिंग कुछ ऐदा दा गाना सी, बट गाना मैनू मिल गया। आप सुनते हैं कॉलर ने 5094। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कदी कदी मैं कोई गाना जिवें तुहानू सोहना जिहा लगे ना, फिर ओहदा थोड़ा थोड़ा गुणगुना लेना चाहिए। मैनू कदी कदी कोई गाना पसंद आवे, मतलब पसंद तो चलो बहुत सारे गाने हुंदे ने, जदों कोई एकदम जो कोई गाना इधर सामने आ जाए, एक लाइन जी थोड़े सामने आ जाए ना, फिर कदी कदी वधिया लगता। बट एनी वेज लो, फिर आप नैक्सट फरमाइशी गाना सुनीए। ये हैगे ने सिंगर शमशेर चीमा, बच्चन बेदिल जी का गाना लिखा हुआ है, तो लो फिर आप सुनते हैं। तो ये नोक चोक जी मेरे ख्याल कोई गाने के बच्चे, तो सुनते आप भी सुनो, इंजॉय करो, तो सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
1: हाँ मैं तेरे नाल नाराज हाँ, मैं कल का तेनू फोन करी जाना, किन्ने सारे तेन मैं मैसेज भेजे, ना तू फोन का जवाब दिता, ना मैसेज का रिप्लाई किया, ऐसा थोड़ी होंगे की गल बोलती क्यों नहीं प्रीत।

करण ले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

क्या बात है, शानदार गीत। पर आपां थोड़ी जी मैं लगता साउंड क्वालिटी दे विच चक्कर है, पर आपां एक वधिया जी साउंड लभ के ओनू उत्थों कंटिन्यू करते हैं।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।